0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: It's 6 AM
3: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

0: सिस्टम मोबाइल का बैटरी चार्जर हेडफोन सिम कार्ड सब किसिम का रिचार्ज कार्ड लाइट खड़ी रेडियो टीवी लगाये संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान सुपथ मूल्य में पाइन साथ ही फोटोकपी फैक्स लेमिनेशन फोटो फ्रेमिंग प्रमाण पत्र डिजाइनिंग तथा प्रिंटिंग फ्रेमिंग अर्जेंट फोटो बैलेन्स स्टक अफ ईमेल इंटरनेट को सेवा सुविधा सब इलेक्ट्रोनिक एंड शिव फोटो स्टूडियो में
1: विवाह व्रत बंध का कार्ड सुपथ मूल्य छपाइन्छ र अर्डर अनुसार का छाप र स्क्याम समेत तुरन्त बनाइन्छ।
2: सबै इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड फोटो स्टुडियो माधी नगरपालिका चार ओखरगोटे सङ्खुवा सभा मोबाइल 98 41 93 181 र 98 69 78 33 33।
0: सबै इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड शिव फोटो स्टुडियो

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाई सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक, इट्स 10 AM
2: अहिले बिहानको 10 बज्यो।

रेडियो काठमाडौँ 92.1 द्वारा उत्पादित लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी चन्द्रमणि गौतमको साथमा रेडियो काठमाडौँ नेटवर्कबाट देशैभरि

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: 6 PM
4: अहिले साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 8 PM
4: अहिले रातको 8 बज्यो।

हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबले हरि बोल वैकुंठमा जानलाई मनको झोका खोल हरि बोल हरि बोल हरि